हाँ फिर सुन लो कि हमने मूसा को किताब इनायत की थी ताकि हम उन लोगों पर जो नेकुकार हैं नेमत पूरी कर दें, और उसमें हर चीज का बयान है और हिदायत है और रहमत है ताकि उनकी उम्मत के लोग अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने का यकीन करें। और ऐ कुफ्र करने वालों, ये किताब भी हम ही ने उतारी है बरकत वाली, तो इसकी पैरवी करो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर मेहरबानी की जाए।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो, उधर ना रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
1: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer. Let's get digital with Zong 4G.
2: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम. अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां. हर क़िस्म जी स्किन

0: जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो व्हाइट एज ब्यूटी सोप। व्हाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
2: मोर को दिल्ली राणा मोर को दिल्ली
1: आवाज की डोर से बंधा हुआ
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: इट्स 10 AM। दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट। भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो, बुधंदा।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: Khoobsurti hai jo asal raaz. सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिन ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज़
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज़ बुधंदा रहो

0: 10:45 AM. This time check is brought to you by
1: हम इस्लामिक बैंकिंग के फरोग में अपना फाल किरदार मुसलसल अदा करते रहेंगे. अस्करी बैंक.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 PM ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते.

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 11 AM. This time check is brought to you by
2: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
3: Ab aap sunenge GFM Network par KTN News.
4: ईरान जवाब ॾींदो। ईरान जे नायब परॾेही वज़ीर काज़िम गरीबाबादी चयो आहे त अमरीका जे सामूंडी नाकाबंदी अॼु खां ख़तम थी वेंदी। ईरानी सुप्रीम लीडर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मुआदे बाबति जल्द बयान जारी कंदी। मुआदे जो मतन सयुनि बाद जारी कयो वेंदो। ईरान एटमी हथियार न ठाहींदो। नई मिसाइल प्रोग्राम ऐं मज़म्मती ग्रुपनि जी मदद कंदो। ईरान जा 24 अरब डॉलर जा मज़म्मत असासा जारी कया वेंदा। ईरान ऐं अमरीका विच में 14 नुक़्तनि वारे मसइले जा तफ़सील साम्हूं अची विया। अमरीकी मीडिया जो चवण आहे त मुआहिदे ते सहन बाद आबने हुरमत जी नाकाबंदी ख़त्म कई वेंदी। सऊदी में मसूदे में ईरान जे तेल ऐं पेट्रो केमिकल बरामद ते पाबंदियूं हटाइण पिण शामिल आहे। लबनान समेत सभिनी महाज़नि ते फौरी ऐं मुस्तक़िल जंग बंदी जो मुतालबो पिण कयो वियो आहे। अमरीका ऐं उन जे इतिहादनि खे ईरान जे नए सिर तामीर लाइ घटि में घटि 300 अरब डॉलर फराहम करणा पवंदा। अमन मुआहिदे जी तौसीक सलामती काउंसिल जे ठहराउ वसीले कई वेंदी। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां अमरीका ऐं ईरान विच में अमन मुआहिदे जी आजी आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त अमरीका ऐं इस्लामी जमहूरिया ईरान में अमन मुआहिदे जी आजियां कयां थो। अमन मुआहिदो तकरार घटाइण ऐं ॻाल्हियुनि ज़रिए अमन खे अॻिते वधाइण तरफ़ पहिरियों क़दम आहे। अमन अमल खे अॻिते वधाइण में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी क़यादत ऐं विज़न खे ख़िराज तहसीन पेश कयां थो। फील्ड मार्शल सदा सुमनीर जे इलाक़ाई इस्तक़ाम लाइ हिमायत तारीफ़ लाइक़ु आहे।

चाहूं तुझे दिल जा सब नहीं दी लिखी है सांसों पे मेरे मेरी सब भाषा है तुम्हें से मैं जीऊंगा कैसे तेरे बिन मुझे सिर्फ इतना बता जा मेरी जान

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जी वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार और आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं प्रोग्राम में कॉल्स के थ्रू. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके साथ साथ आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं GFM88 के पेज के ऊपर आने के बाद पोस्ट मिलेगी आपको जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं फेसबुक यूजर्स लोग. और जो लोग सिंपली मैसेज करना चाहें, सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे. सुर लगाओ गाना सुना हमारा सेगमेंट हम स्टार्ट करते हैं जी. एंड देखते हैं आज के सेगमेंट में फर्स्ट कॉलर कॉनर कहाँ से. हेलो वालेकुम असलाम कर रहे हैं.
1: हाफिज सावल बात कर रहा हूँ.
0: हाफिज सावल मोरू से कैसे ठीक ठाक. कौन सा गाना सुना.

अपना शहर, अपना घर, मोरो और मोरो की

0: तदा थो झुमरियूं पाई सिखा परे आई तदा थो झुमरियूं पाई तो सचो त न तोखे लगी सुहत तोखे मगी।
1: अच्छा इस गाने का टाइटल क्या है?
0: मंगिया स्वाद तोखे मगिया
1: मंगिया
0: मगी मगी
1: मगिया। ओके मैं इसको सर्च करती हूँ और किसी को डेडिकेट करना है।
0: अस्सी बदल ढेलो को पासन ढेलो को इसका मेरे ढेलो को जो भी सुन रहे मेरे तरफ से।
1: ओके जी अल्लाह हाफिज। और जी इसके अलावा ये रहा गाना और इसको सुनेंगे एंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे। थोड़ा सा आगे से प्ले करें।

0: Okay, so welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार। आपका मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कॉल्स के थ्रू। हमारा सेगमेंट है सुर लगाओ गाना सुनाओ, जिसमें हम लेने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट कॉल। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: असद बात कर रहा हूँ सकरण से।
0: असद बात कर रहे हैं सकरण से, बड़े दिनों बाद नहीं आपने कॉल की? ओके, गाना सुनाएंगे?
1: हाँ, गाना मुझे सुना दे आज।
0: सुना दे
1: हाँ, कोई सुना दे, सिंधी है या उर्दू सुना दे।
0: ठीक है, आप सुनाएंगे तो मैं सुनाऊंगी ना। कौन सा गाना है? ओके, सुनाइए। चले मैं आपको सुना देती हूँ, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। 03000113488। अच्छा, सेगमेंट का रूल है, माजरत के साथ, जो बंदा आके गाना गाएगा ना वही गाना मैं प्ले करूंगी। अगर आप मुझे सिर्फ टाइटल बता देंगे तब मैं प्ले नहीं करूंगी। रूल ये है कि गाना पड़ेगा तब आपका प्ले होगा। अच्छा, नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो, गलती से कॉल लगी थी क्या? अच्छा, एक और कॉलर। हेलो
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
2: शहर गुलाब लिगारी कोट मसाफ खान रिंद, शहर गाली खान रिंद।
0: कैसे भाई, ठीक ठाक?
2: अल्हम्दुलिल्लाह भाजी, आप सुनाओ।
0: जी मैं बहुत अच्छी, मुझे बताएं कि ये प्रोग्राम सुनते हैं?
2: जी हाँ, प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: ओके, और मुझे बताओ, सॉरी बताएं कि गाना सुनाएंगे?
2: जी
0: गाना सुनाएंगे।
2: चल आज तो मरम हराम के दिन है, मेरा ख्याल है।
0: अरे कॉल कट गई भाई की, पता नहीं क्या कह रहे थे भाई। अच्छा, एक और कॉलर लेते हैं जी, ट्राई करते हैं। हेलो,
3: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
3: जी अलाउद्दीन बात कर रहा हूँ।
0: अलाउद्दीन कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: सक्खर से।
0: सक्खर से बात कर रहे हैं, प्रोग्राम सुनते हैं?
3: जी जी, सुन के थक गए हैं, कॉल तो अभी लगी है भाजी।
0: सुन के थक गए, कॉल तो अभी लगी। अच्छा, मुझे बताएं कि गाना सुनाएंगे?
3: गाना हम नहीं सुनाएंगे, आप सुना होता और लान्याजी का कोई गाना।
0: ओके जी, मैं सुनाती हूँ, और कुछ कहना है?
3: बड़ी मेहरबानी आपसे।
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। और ये थे कुछ स्वीट कॉलर्स जो कि हमने इंटरटेन किए, और इसी के साथ

0: अमेरिका ईरान में अमन मुआहदो थी वियो। मुआहदे जो सयन वारी तकरीब 19 जून ते स्विट्जरलैंड में थन्दी। मुआहदे वारी तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ जो शरीफ थियण जा इम्कान आन। वजीर आजम शहबाज शरीफ चवा ईरान ए अमरीका लबनान समेत समूरन महाजन ते फौजी कार्रवाईयूं फौरी ए मुस्तकिल तौर ते खत्म कंदा। तकरार जी सफारती हल ते अमरीका ईरान जब थोराता आयो। सऊदी अरब कतर ए तुर्किया जो किरदार बसारा जो रहो। सफारतकारी राबतन जो सिलसिलो जारी रहंदो। वजीर आजम शहबाज बाद अमरीकी सदर ट्रंप ईरान से मुआहदो थियण की तस्दीक कर छी। ट्रंप चाहे तो मुआहदे से सयुन बाद जुमेवारे डी अब हुरमज भी खुली वेंदो। ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी भी खत्म कर शुरू कर छी है। जहाजन की अचवन जुमे का शुरू थी वेंदी। अब हुरमज में गुजरंदड़ जहाजन का टूल टैक्स न वरतो वेंदो। दुनिया जा जहाज पैं सरगर्मी शुरू कन। नायब सदर जी डेवेन चाहे तो सदर ट्रंप ईरान के खतरे के खत्म करण में कामयाब रो है। मुआहदो 50 साल ताई विच ओवर के तब्दील कर छींदो। मुआहदे से विच ओवर में खुशहाली की शुरूआत थींदी। ईरान अमरीका के अमन मुआहदो कबूल करण ते मजबूर कयो। मफाहमत की यादाश के मतलब दुश्मन ते भरोसो करण ना है। आखिरी मुआहदे लाए गालियों 7 दिन अंदर थींदियूं। मुआहदे जो एतराम न कयो वियो ते ईरान जवाब डींदो। ईरान के नायब परदेही वजीर काजम करीब आबादी चाहे तो अमरीका की सामूरी नाकाबंदी अज का खत्म थी वेंदी। मुआहदे जो मतन सयुन बाद जारी किया वेंदो। ईरान के खातुल अंबिया चाहे तो शिकस्त बाद अमरीका ए इसराइल वट हथियार फिटा करण का सवाए बो को ऑप्शन न हो। ईरान एटमी हथियार।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।

0: heart for sure.
1: Habibi, I love you, I need you, Habibi,
2: ओके जी कॉल लेना स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मौजूद होंगे लाइन पे, सो जी चेक करेंगे कॉल हैंग हो गई है.

0: हाँ जी,
1: तो आपने थोड़ा माइक सुने चेक किया कर रहे थे कि हम जो भी बात करते हैं तो हमारी आवाज ऐसी आती कुछ समझ में जैसे नहीं आता कभी तो भी उसकी आवाज।
0: अच्छा, मेरी आवाज समझ नहीं आती या कॉल पे नहीं आती?
1: आवाज भी थोड़ी दबी दबी से होती, जो हम बात करते हैं ना लोग कॉल पे,

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
2: GFM 88
1: नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अजरा बहन जरा बात तो सुनो, हटो पीछे, भागो। अहमद हटो वहां से।
2: हादसे अचानक ही हुआ करते हैं, घबराए नहीं, समझदारी से काम लें।

अमरीकी सदर ट्रंप ऐं ईरानी सुप्रीम लीडर खे मुबारकबाद पेश कयां थो। जंग जी बाहि विसाइण में फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली किरदार अदा करण जे लाइ चीनी सदर सऊदी वलीहद, कतरी अमीर ऐं तुर्क सदर अहम किरदार अदा कयो। सभिनी जो थोरायतो आहियां। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जे ऐलान बाद अमेरिकी सदर डोनल्ड ट्रंप बि ईरान सां वाइदो थियण जी तसदीक करे छॾी। डोनल्ड ट्रंप चयो आहे त वाइदे ते सहियुनि बाद जुमेवारी ॾींहुं आबदा हरमुज बि खुली वेंदो। ईरानी बंदरगाह जी नाकाबंदी बि ख़त्म करण शुरू करे छॾी आहे। जहाज़नि जी अचवञ जुमे खां शुरू थी वेंदी। आबदा हरमुज मां गुज़रंदड़ जहाज़नि खां टोल टैक्स न वरितो वेंदो। दुनिया जा जहाज पंहिंजी सरगर्मियूं शुरू कनि। नायब सदर जे डी वेंस चयो आहे त सदर ट्रंप ईरान जे खतरे खे ख़त्म करण में कामयाब रहियो आहे। वाइदो 50 सालनि ताईं विचोभर खे तब्दील करे छॾींदो। वाइदे सां विचोभर में खुशहालीअ जी शुरूआत थींदी। ईरान अमेरिका खे अमन वाइदो क़बूल करण ते मजबूर कयो। मुफ़ाहमत जी यादाश्त जो मतिलब दुश्मन ते भरोसियूं 60 ॾींहनि अंदर थींदियूं। वाइदो जो एतराम न कयो त ईरान जवाब ॾींदो। ईरान जे नायब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त अमेरिका जी सामूरी नाकाबंदी अॼु खां ख़त्म थी वेंदी। वाइदे जो मतन सहन बाद जारी कयो वेंदो। ईरान जे ख़ातिम लंबिया चयो आहे त शिकस्त बाद अमेरिका इसराइल वटि हथियार फिटा करण खां सवाइ ॿियो को ऑप्शन न हो। ईरान एटमी हथियार न ठाहींदो। नई मिज़ाइल प्रोग्राम ऐं मज़ामती ग्रुप्स जी मदद कंदो। ईरान जा 24 अरब डॉलर जा मुंजमद असासा जारी कया वेंदा। ईरान अमेरिका विच में तय थियल 14 नुक्तनि जा तफ़सील साम्हूं अची विया। अमेरिकी मीडिया मूजिबि वाइदे ते सहन बाद आबदा हरमुज़ जी नाकाबंदी ख़त्म कई वेंदी। ईरान जे तेल ऐं पेट्रोकेमिकल बरामदात तां पाबंदियूं हटायूं वेंदियूं। लबनान समेत सभिनी महाज़नि ते फौरी ऐं मुस्तक़िल जंगबंदीअ जो मुतालबो बि शामिल। अमेरिका ऐं संदसि इतिहादनि खे ईरान जी नए से तामीर जे लाइ घटि में घटि 300 अरब डॉलर फराहम करणा पवंदा। अमन वाइदे जी तौसीक सलामती काउंसिल जे 6 वसीले बि कई वेंदी। सदर आसिफ अली ज़रदारी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ऐं पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारां ईरान अमेरिका वाइदे जी आजियां। सदर आसिफ ज़रदारी चयो आहे त मुफ़ाहमत हतमी वाइदे जो बुनियाद बणबी ऐं ख़िते में जटादार अमन क़ाइम थींदो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार चयो त अमेरिका ईरान वाइदे खे मुस्तहकम करण वारनि कोशिशुनि जी हिमायत कंदासीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त अमन वाइदो तकरार घटाइण ऐं ॻाल्हियुनि ज़रिए अमन खे अॻिते वधाइण तरफ़ पहिरियों क़दम आहे। अमन अमल खे अॻिते वधाइण में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी क़यादत ऐं विजन खे ख़िराज तहसीन पेश कयां थो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली जी इलाइक़ाई इस्तेहकाम जे लाइ हिमायत तारीफ़ लाइक़ आहे। क़ौमी असेंबली जे स्पीकर अयाज़ सादिक़ पारां ईरान अमेरिका वाइदे ते क़ौम खे वधायूं। सरदार अयाज़ सादिक़ चयो आहे त पाकिस्तानी क़यादत अमन अवार्ड जी मुस्तहक़ आहे। अमन वाइदे में पाकिस्तान जे किरदार ते क़ौम खे मुबारक ॾियां थो। फील्ड मार्शल आसिम अली जी महिनत खे बि सलाम पेश कयां थो। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ चयो त ईरान अमेरिका वाइदे ते जुमेवारी ॾींहुं सहियूं थी वेंदियूं। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल अमन खे कामयाब करण जे लाइ ॾींहुं रात महिनत कई। जापान जे परॾेही वज़ीर जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां फोन ते राब्तो। ईरान अमेरिका वाइदे समेत ख़िते जी सूरतयाल ते ॻाल्हियूं। जापानी परॾेही वज़ीर पारां ईरान अमेरिका अमन वाइदो कराइण वारनि पाकिस्तानी कोशिशुनि जी साराह। ॿिन्ही अॻवाननि जो राब्तनि में रहण ते इतफ़ाक़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 1:15 PM.
3: This time check is brought to you by
4: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
5: काश हमारे पास भी ऐसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
6: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
1: सिंधी अब्दुल्ला सभी खूबसूरत मासूम ही सुने समात उनके मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। बुरखुली दुआओं के संबंध है, चाहतों की बारिश वासवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात में से जाकर जमीन से आसमान तक जिंदगी से मुंह तक चांद से तारों कम से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे तो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जनाब, आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर आप इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जो प्रोग्राम आप लोगों के लिए पेश किया जा रहा है, इस प्रोग्राम में आप लोगों की खूबसूरती की बातें होती हैं और साथ साथ आप लोगों को बताया जाएगा कि अगर आप हसीन और खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती को मेंटेन रखना चाहते हैं तो ये सब कैसे हो सकता है। बिल्कुल जी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। ओके जी, कहते ना कि इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हमने स्टार्ट किया था, जरा अपना भी तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर्स, प्रोविजन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर टीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुनाई होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुकी है इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के लिए और साथ ही साथ जितनी भी प्यारी प्यारी समाज हमारे साथ मौजूद है तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ जरा अपने हाल चाल बताते जाइए। सो डियर लिसनर्स, हालत कैसे है आपकी हालत, उम्मीद शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सपकुल मूड के साथ सपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ली हैं। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होते हैं और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ ओ इतनी सारी गालियों करने आए हूँ। तो बिल्कुल रेडी शेडी हो जाइए हमारे साथ मजे करने के लिए, बातें करने के लिए और अच्छा सा म्यूजिक कलेक्शन एंजॉय करने के लिए। ओके जी, इसी के साथ साथ बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए हमें फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। तो भैया अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला। बिकॉज आली रे आली सिद्राली बोस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं, आगे से प्रोग्राम करते हैं जी एक बहुत प्यारी सी नात के साथ। बहुत प्यारी नात हमारी लिस्ट में मौजूद है तो उसके बाद हम जैसे ही वापस आते ही बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। इस्तेमाल कर रहे हैं, खूबसूरत होते जा रहे हैं और खूबसूरती को वेलकम करते जा रहे हैं।

अवेलेबल हूंदा त तव्हां जे लाइ आसानी हूंदी। सो तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595 नंबर ते राबतो कयो ऐं राबते करण खां पोइ जेको आहे वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जी घुर्ज कयो, मांग कयो ऐं उन्हनि खे ॿुधायो त तव्हां इस्तेमाल करणु चाहियो था वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अॼु मां तव्हां खां सवाल पुछियो आहे त मूंखे ॿुधायो त कंहिं माण्हू खे तव्हां सुञाणींदा हुजो पर उन माण्हूअ खे सुञाण खां तव्हां इनकार करे छॾियो हुजे त नो असां न आहियूं सुञाणींदा हिन खे। ओके मूंखे जल्दी ॿुधायो। अॼु सवाल मूंखे लॻे थो मां काफ़ी इंट्रेस्टिंग पुछो आहे तव्हां खां। सो बिल्कुलु तव्हांजा फीडबैक्स मूंखे मिलंदा वञनि था। असां सां गॾु मौजूदु आहे अली अकबर बिरोही भाई। अली अकबर बिरोही भाई में सकरनि से सुन रहे हैं। ओके जी वालेकुम अस्सलाम एंड खुश आमदीद कहते हैं प्यारे भाईजान को कहते हैं विलेज मोहम्मद उस्मान बिरोही सकरन से वीरी नाइद्रा मुस्कान आप प्लीज बिरोही मैं कोशिश करती हूँ भाईजान आपको गाना सुनाएंगे। और ये किशोर भाई कहते हैं हम सुनेंगे दुनिया को फिर कभी, हम सुनेंगे दुनिया को फिर कभी, तुम्हारी आवाज से फुर्सत नहीं फुर्सत मिलनी चाहिए, ऐसी कातिल आवाज रखने के लिए तुम्हें सजाए मोहब्बत मिलनी चाहिए। सलाम अदा खुश आयो कैसा लगा मेरा मजाक। मजाक बहुत अच्छा था। ओके जी सो वेलकम करते हैं हम अपने प्यारे भाईजान को। और मीर देवस हमारे साथ मौजूद है। सलाम कैसी हैं आप, आज सॉन्ग तो सुनाइएगा तुझा वार खुलिया हाणे वाओ घुले न घुले शमन का। चले मैं बिल्कुल ये वाला गाना लगाने की कोशिश करूंगी। और उनखा अलावा तुम पोस्ट के लाइक शेयर करना। हलो एसन अरबाणी हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम असलम एसन शाला तुम खुश आयो। अच्छा ये हमारे साथ है मोलाई मुजाहिद बोसदार। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं जी केड़ा हाल आहिन अवां जा। उम्मीद हर रोज यहाँ ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला अवां के हमेशा पंहिंजे छपर शाम में रखे आमीन आमीन। तमाम से गड मौजूद आए मोहब्बतूं तमाम जो। और समीर अली कहते हैं समीर अली फ्रॉम सऊदी अरबिया में आपका पुराना लिसनर, आपका शो 2018 से आपके साथ साथ हूँ। केड़ा हाल आहिन अवां जा। उम्मीद तो करियां तो ठीक ठाक हूँ आमीन जी। बिल्कुल मैं ठीक आया तमाम बुधा की आयो। और सूफियान अहमद हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम असलम सूफियान केड़ा हाल आहिन तमाम खुश आयो। उनखा अलावा वासु भाई भी असा गड मौजूद आए। वासु भाई तांजो मोहब्बतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया। और ये हमारे साथ ही अर्ज मोहम्मद गोला भाई जेका बाबासी में सुन रहे हैं। अर्ज मोहम्मद गोला भाई तांजो मोहब्बतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया। इमदाद अली बलोच भाई वालेकुम असलाम तव्हांखे चऊं था बाबा खुश आमदीद प्रोग्राम में। और उनखा अलावा बिलाल अली हमारे साथ कहते सलाम मां भी ॿुधां पियो अॼु शो अवां जो। वाह वाह साईं वाह वाह वेलकम चऊं था तव्हांखे बिलाल अली। ओके सो अॼु तव्हां मूंखे इहो ॿुधाइण वारा आहियो त छा कॾहिं तव्हां ईअं कयो आहे त कोई इंसान जंहिंखे तव्हां सुञाणींदा हुजो पर तव्हां हुनखे सुञाण खां इनकार करे छॾियो हुजे। ईअं बि थी सघे थो, खोड़ माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि। सो तव्हां ॿुधायो तव्हां सां कॾहिं ईअं थियो आहे या फिर कोन, मूंखे ॿुधायो पिया। हुन सां गॾोगॾु जेको आहे तव्हां असांखे ज्वाइन कंदा वञो पिया 888-1 ते ऐं फेसबुक ते। ऐं मूंखे इहो ॿुधायो पिया तव्हां छा इस्तेमाल कया आहिनि वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। उन खां अलावा हाणे टाइम थियो आहे त असां शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ जल्दी वापसी तव्हांजी मोटी ईंदासीं। तव्हां करे न वञो हिते वेठा हुजो। मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एज एंड टी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए ताकि खूबसूरत हो सके।

0: चमकता निखार ताजगी के साथ वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन का राज अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: कहती अम्मी, मैं मनोज हूँ, जिंदगी में अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ सही होता।
1: देखिए मोहलत रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
4: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GFM की आवाज़।
3: GAFM नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

मतलब आप पानी जानी चाहिए गाल समझो मुझे जानी चाहिए गाल अली हाँ भाई उस समय जोर आए मुझे जाने प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड थी पर जनाब व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी

स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट चितावन सा आई वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स तमा हनो पया डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तमा लगायो पया न यो भी बुधायो पया अगर तमा अन्या तई कोन इस्तेमाल कया त बाबा कदे लगाई।

पी जी, सो प्रोग्राम जी असा लास्ट लिंक में अची वया आयो जिन मानन असा के हाने हाने बुधन स्टार्ट कयो या वरी जेके स्टार्टिंग का वठी असा सगन मौजूद आ बाबा ता जो मोहब्बतू आहन ये कुर्ब आहन तवा जो आई बियो छा सवाल पुछो तवा का कडे तवा ये कयो आ त के ता सुनानी ता हो जो पर ता हासकारी ये कयो जे त ना असा इन के नायो सुनानी ता पर करिस।

हिदा सारा प्यारा प्यारा माण्हू असां सां गॾु मौजूद आहिनि. किथां किथां तव्हां असांखे जॉइन कयो आहे, तव्हां जे फीडबैक जी तरफ़ अचूं था. अच्छा, विलेज गुलाम कासिम सोलंगी फ्रॉम हिंगोरजा से दिलावर हुसैन सोलंगी बाजी सदरा अब कैसी है. हमें शमन का गाना सुनाईगा, तेरी यादें भुलाना पाऊंगा. शमन जो गानो आज सलेमा दिसां थी मिली हो तो हलाइंदासी तमाजे लाए. इधर थैंक यू एंड डेडिकेट जमादार खुदा बख्श सोलंगी, आसिफ सोलंगी, सलीम एंड मुबशिर सोलंगी जे नाले. ठीक है प्यारा भा, मीर अल्लाह डिनो खान टालपुर हमारे साथ. आपका शो वेरी वेरी नाइस. सलाम आपको जी, वालेकुम असलाम.

0: अच्छा ये मौजूद है सलाम सदरा मुस्कान शो हर रोज वे शौक से बुधा आयू अदीब डी का एक गानो चवान तो अवं प्ले नथा कयो छो मुझी भेण केड़ी नाराजगी सजादुल्ला जमाली हमाले साथी और विलेज रईस रईस मोहम्मद हसन जमाली शफी आबाद नवाब शाह मुझे दोस्त बुद्धि पयो आशिक अली जमाली अली हैदर अली गुल जाम अली जमाली है ठीक है स्पेस क्यों दी है आपने और प्लीज प्लीज सरमन सिंधी जो गानो चले मां गायो आ लिस्ट में अगर टाइम बची हो तो ता जो गानो भी बुद्धि वठनास न त मां सुभाने ता जो गानो लाजमी तमा के बुधराइनम ठीक है भी एकड़ो सॉन्ग आ है जो को लिस्ट में लगायो आ मास्टर मंजूर जी आवाज जो गानो आ दिल रुबा जी नाले डेडिकेट करना सी
1: मुझे विछड़ण जो बुद्धि छो आहे बेकार
0: अच्छा सजाद अली जमाली सिटी नवाब शाह शो इज नाइस सॉन्ग प्ले कीजिएगा मुमताज मोरई ओके भाई और फहद अली लाशारी हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते हैं गाना सुनाइएगा ओके अच्छा ये माशूक अली अलमानी है विलेज नूर शाह से सॉन्ग सुनाए मुमताज मोलाई एम एम लिखा है अच्छी बात है मैं समझ गई ये मुमताज मोलाई है मना हाने मुमताज मोलाई भी एम एम सैया बाबा यार वधी जा रहा है तो माँ होशियार है न तो मतलब

ओके जी गोट मोमेंट तयब थेबू का हबीब अल्लाह थेबू केरी तमाजो शुवरी नाइस से सलाम तमाके वालेकुम अस्सलाम प्यारा भा तांजो मोहब्बत आइन वालेकुम अस्सलाम सिद्रा बाजी हमारी सारी फैमिली आपका प्रोग्राम सुन रही है शहबाज जमाली और हैं वलद मिस्री जमाली नवाब शाह शहबाज जमाली वलद मिस्री जमाली नवाब शाह ओके जी बहुत शुक्रिया आपका आपकी सारी फैमिली को वेलकम करते हैं उनके अलावा हमारे साथ हैं जी खालिद महमूद सॉन्ग जी फरमाइश कई है तुम छाते हुआ भला तांजा नाला बाला चेंज थी वया अच्छा हिकड़ी गाल ता मुखे बुधाए जो मतलब छा थियो एड़ो जो मतलब तवा जाए रुख ही चेंज थी वया बुधाए जो मुखे जरूर ठीक है और टॉपिक ते इमरान अली बिरोही भाई क्या कहते हैं कि टॉपिक हाँ बाजी हाँ हाँ मैंने भी एक दिन अपने दोस्त के साथ ना ऐसा किया था वो अब तक नाराज है मुझसे अरे भाई क्या बात है अच्छा इरम कहती यहाँ पे जवाब है मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया चले सही अच्छी बात है माशाल्लाह खुश रहे।

अच्छा अनवर भाई के टॉपिक असा कदें कदें मिड़े ये कंदा आयो सही आ मिड़े ये कंदा कयो सही आ अच्छा आबिद भाई चाहता चो गुड जॉब थैंक यू वेरी मच मोहम्मद सलमान कहते वाओ वेरी नाइस सॉन्ग गुड खा के मर जावा चावा और मोलाई मुजाहिद दोस्त यार कहते चलो ही वारो गानो हलाजो इन मूवी जो गानो बियो आए जको मु लगायो वा लिस्ट में गजी करे बुदना से ठीक है और ये फिरोज अली बिरोही भाई हमारे साथ हैं हेलो और जवार बच्चल शंबानी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं वेलकम करते हैं प्यारे भाई को और साथ साथ आपको ये बताते चलें जनाब कि ये प्रोग्राम जो आप सुन रहे हैं जिसका नाम है व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो तो आप जल्दी से मुझे बताइए कि आप लोगों के पास जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये अवेलेबल हुए हैं या नहीं क्योंकि कई मरतबा ऐसा हो जाता है कि आप जो है ना वो आकर ये कह देते कि बाजी सां मिलन कौन था मिलन था तो जाहिर सी गाल तुम वो कि एरिया में गोठ में तव सिटी में ही प्रोडक्ट अवेलेबल होजन घुर्जन उनके नंबर बुधाई आया प्रोग्राम में घड़ी घड़ी ताकि वो नंबर डायल कर सो नंबर डायल करने का पोए जो तेजे एरिया में अवेलेबल कराए सो नंबर है 03 15 799

0595 ही नंबर था लाजमी डायल कर जो पांचे करीबी जनरल स्टोर से वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजन या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजन तव अवेलेबल करायो वठी अचो परचेज कयो इस्तेमाल कयो बाबा सोना सोना थी वञो।

0: know, yo, when I'm with you, boy, I feel incredible.
1: Okay, जी और ये हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. हैप्पी मंडे आफ्टरनून माई स्वीट बेस्ट आरजे सिद्रा मस्कान. आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. आप बताएं आप कैसी हैं मेरी प्यारी फजीला. और कहती हैं कि सलाम टू माई स्वीट हार्ट मोम एंड कायनात और सब सुनने वाली लड़कियों को. और कहती हैं मैंने तो नहीं बताना. हाँ जी बिल्कुल आप हमारे साथ मौजूद हैं. थैंक यू. ओके जी अशफाक खोड़ो हमारे साथ मौजूद है. हेलो. अच्छा चलो ठीक है. तमाम जी गालोई तो पोस्ट सही है. दर्द दिल कहती है कि सितारों में रहता है बस शो करने आता है मुंह जो जानी. ये वरी की

ना ला कसम सनाया भूली कसम सनाया भूली पर मिलो ही ना छ कया से अच्छा मीर बेवस कहती लगी तू अज हाँ यो वाकई जो प्ले रहती ना इन लाइ सुबाने तवा के अचनो पनो सही आ सुबाने गाना बुदंदासी अज जा गाना रेजी वन था ना सुबाने न जा गाना हलाइंदासी सही आ मानला चगड भासा से गड मौजूदा मिठानी खा मा ठीक आया पेरा भा ताम बुदा की आयो मजे में खुशबाश

0: मोए मोए हो गया, कॉल नहीं लगी उसकी। मैं भी सोच रही थी अलीसा की आजकल कॉल नहीं लग रही है, ये क्या मसला है दया, कुछ तो गड़बड़े। अच्छा अच्छा दादा जो अदी अगर आओ वठण वणा अगर हु पैसा घुरे त केन जो नंबर लगाया कोई तमा के डायल करनो आ है 03 15 799 0595। अच्छा मता ना के डायल कयो तो इन मौके ते कुटकी खराई दऊ छा
1: एक एहसान लिया मैं क्या हूं ये पहचान।
0: अच्छा बिलाल कहते हैं हाने मां हर रोज इंदम ये ना फैया बाबा अच्छो और निजाम भट्टी कादरी हमारे साथ मौजूद है। वेलकम जी, वेलकम। ही गानो हलायो आज जी फरमाइश असा के फहाद भाई कई मुझे शायद ख्याल में सो ही गानो बुधना सी एकड़ी शायरी आ जका इन सा गड्डो पढ़ना सी। अच्छा जब भी पैनल पर मैसेज करें ना तो अपना नाम लिखा करें, ठीक है। अच्छा ये तहमीना हमारे साथ है, क्या बात है तहमीना, आप हमारे प्रोग्राम का ऐसा है, सो बहुत शुक्रिया। और सोबल अली हमारे साथ है, तमाम जो भी मोहब्बतू आन प्यारा भा प्रोग्राम बुधो प्यार

पता है। अम्मी हमेशा कहते हैं अपना पहला तीर तुम पर वही चलाएगा जिसे तीर अंदाजी तुम सिखाओगी। अब इसी बात पर एक शेर है, शायर जनाब लिखते हैं कि और अब वो लोग मेरी राह की दीवार है, और अब वो लोग मेरी राह की दीवार हैं जिनको मैंने अपने अंदर से गुजर जाने दिया। आपकी पैरों के नीचे जमीन वही खींचते हैं जिनको आप उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। आपके खिलाफ जहर वही उगलते हैं जिनको आप बोलने का हुनर देते हैं। आपसे हसद वही करने लगते हैं जो उरूज की दुआएं करते ना थकते थे। मुश्किल में सबसे पहले अक्सर वही हाथ छोड़ते हैं जिनकी मुश्किल में कभी आपने उनका हाथ थामा था। अगरचा पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, जहां बुरे बसते हैं वहीं अच्छे इंसान भी होते हैं, लेकिन बनाकर जांचने से बेहतर है जांच कर ताल्लुकात बनाइए, ताकि ना अहल लोग दिल की ऊंची तख्तों तक कभी ना पहुंच पाए।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर
3: KTN तकरार घटाइण ऐं ॻाल्हियुनि ज़रिए अमुन खे अॻिते वधाइण तरफ़ पहिरियों क़दम आहे। अमुन अमल खे अॻिते वधाइण में वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी क़यादत ते विजय क़ौमी असेंबली जी स्पीकर अयाज़ सादिक़ पारां ईरान अमेरिका माहिदे ते क़ौम खे वाधायूं। सरदार अयाज़ सादिक़ चयो त पाकिस्तानी क़यादत अमुन अवार्ड जी मुस्तहक़ आहे। अमुन माहिदे में पाकिस्तान जे किरदार ते क़ौम खे मुबारक ॾियां थो। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी मेहनत खे बि सलाम पेश कयां थो। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ चयो त ईरान अमेरिका माहिदे ते जुमे वारे ॾींहुं सयूं थी वेंदियूं। वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल अमन खे कामयाब करण लाइ ॾींहं राति महिनत कई। जापान जे परे वज़ीर जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़दार सां फोन ते राब्तो। ईरान अमेरिका माहिदे समेत ख़िते जी सूरतयाल ते ॻाल्हियूं। जापानी परे वज़ीर पारां ईरान अमेरिका अमन माहिदो कराइण वारनि पाकिस्तानी कोशिशुनि जी साराह। ॿिन्ही अॻवाननि जो राब्तनि में रहण ते इतफ़ाक़। गॾियल क़ौमुनि समेत आलमी बिरादरी पारां अमेरिका ऐं ईरान विच में तय थींदा। इसराइल जो ईरान अमेरिका विच में तय थियल वाइदे खे तस्लीम करण खां इनकार। लबनान ऐं शाम जी कब्ज़ो कयल इलाइक़ा नछर

0: जो ऐलान इसराइली दिफ़ा वारे वज़ीर चयो आहे त इसराइल लबनान ऐं शाम जा कब्ज़ो कयल इलाइक़ा न छॾींदो। इसराइली फ़ौज अणॼातल मुदे ताईं लबनान, शाम ऐं गज़ा में मौजूद रहंदी। इसराइल जे तहफ़ुज़ खे हर हाल में यकीनी बणायो वेंदो। इसराइली वज़ीर इतमार बिन गुएर चयो आहे त अमेरिकी वाइदे जा पाबंद न आहियूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: अपना शहर अपना घर मटियारी, और मटियारी की आवाज
4: GAFM 91.6।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

यकीनन हमारे ये जो असम मैसेज होते हैं, ये छोटे छोटे जो पैगामात होते हैं, ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं, ये आपकी जिंदगी में मजबूत तब्दीली जरूर लाती होगी। सामिन हम रोजाना दोपहर 3 बजे करते हैं आपको ज्वाइन, और शाम 5 बजे तक ये सिलसिला आपसे गुफ्तगू शनीद का ऐसे ही जारी और सारी रहता है। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको इतना नवाजे कि आप देखकर सजदा रेज हो जाओ, दुनिया और आखिरत की भलाई आपका मुकद्दर हो, रहमत बरकतें हमेशा आपके साथ हों, खुशियां आपकी मुंतजिर हों, कामयाबी हमेशा आपके साथ हो, जहां जाओ अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, हर शर हर फितने से महफूज रखे, हर दुआ आपकी कबूल हो, सब ख्वाहिशात आपकी पूरी हो, और आप हमेशा हमेशा रब के शुक्र गुजार रहें। यही है आप सबके लिए हमारी दुआ, दिली दुआ। और जनाब आज किस हवाले से गुफ्तगू होने वाली है हमारी और आपकी, तो जनाब आज आपने हमें ये बताना है, एक टिकी सा क्वेश्चन है आपने बताना है। अगर खुदा ना खास्ता अचानक आपके घर में आग लग जाए तो आप सबसे पहले क्या उठाकर वहां से दौड़ लगाएंगे या क्या लेके भागेंगे? सबसे पहले आपने क्या चीज उठानी है और वहां से दौड़ लगानी है ये मुझे बताना है। और बहुत लाइट सा टॉपिक है, मेरे टॉपिक्स जो है ना वो बहुत हैवी से होते हैं, मतलब कुछ डिफिकल्ट होते हैं। लिसनर्स का कहना है कि आसान पूछा करें, तो मैंने वैसे ही बैठे बैठे ऐसे ही एक माइंड में आया ये सवाल, मैंने सोचा लिसनर से पूछते हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन फर्ज करें खुदा ना खास्ता आपके घर में आग लग जाए तो आप सबसे पहले क्या चीज उठाकर भागेंगे? और इंटरेस्टिंग रिप्लाई देने के लिए आपने डायल करना है 03136156688 SMS के लिए मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में MPK स्पेस नाम और पैगाम रवाना करना है। आठ आठ आठ एक पर और मैं मूव करती हूँ आपकी कॉल्स की जानिब। जानना चाहूंगी लिसनर्स से उनका रिप्लाई, खुदा ना खास्ता आपके घर में आग लग जाए

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM, इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक।
1: शदीद गर्मी सबब शहरन बाहर वनो हल्का कपड़ा पायो मथो ढके रखो उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो वधिक पानी पियो महफूज रहो ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन सा पेश कयो वयो।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: किया है सिंध जी दिल। जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो नहीं।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर। टाइम टू कमर्शियल ब्रेक। गैर जरूरी तौर ते बाहर न वञो, हल्का कपड़ा पायो, मथो ढके रखो, उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो। बारन, बुजुर्गन, बीमार मान जो खास ख्याल रखो। वधिक पानी पियो, महफूज रहो। ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमते सिंध, PDMA, कमिश्नर कराची, के इलेक्ट्रिक, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन सा पेश कयो वयो।
1: अज़रा बहन, जरा बात तो सुनो। हटो पीछे, भागो।
2: काम में सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं। इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए 112 पर राबिता करें। महकमा सेहत, हुकूमत सिंध।
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान,
3: GFM ETH नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

500 लोग कहेंगे सऊदी अरब, सऊदी अरब। अरे वो तो सबकी ही पहली दिल। ख्वाहिश सबकी ही होती है, तो ये हमारे लिसनर जो है ना, देखते नेक्स्ट और में क्या करते हैं, क्या कहेंगे निदा सब सुनने वालों से।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क KTN न्यूज।
1: सिंध जी नए माली साल जी बजट 26-27 जी बजट पेश कंदो। पेंशन में 8 ऐं पघारनि में 10% ताईं वाध जो ऐलान थियण जो इम्कान। सूबाई तरक़ियाती बजट 800 अरब रुपियनि खां घटि रहण जो इम्कान। मौसमियाती तब्दीली सिहत ऐं तालीम वारनि मनसूबनि खे अहमियत ॾिनी वेंदी। वॾो वज़ीर मुराद अली शाह लगातार 10 बजट पेश कंदो।

0: अल्हम्दुलिल्लाह ईरान अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम मुहदों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेजबानी अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की दो ममालिक के दरमियान मुआहदा नहीं है स्पीकर, बल्कि अमन और मुकालमे की फतह है।
1: पाकिस्तान की ट्रैकड़ी कामयाब, अमेरिका ईरान समूरन महाजन से जंग खत्म कर छी, बिन्हीं मुल्क विच में जंग के खात्मे वो शुरुआती मुआहदो पाकिस्तान की मेजबानी हेठ स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में 9 जून से वजीर आजम शहबाज शरीफ में ब्याह शरीफ थन्दा। कौमी असेंबली में खिताब कन्दे वजीर आजम शहबाज शरीफ चयो त जंग की डिघी रात बाद अमन जो सिज निकरी चुको है। ईरान अमेरिका लबनान समेत समूरन महाजन से जंग रोकने जो ऐलान किया है। तारीखी मुआहदे की तकरीब 19 जून से जुमेवार ढी जिनेवा में थन्दी, जैकी मेजबानी पाकिस्तान कन्दो। ये बिन मुल्क में अमन मुआहदो न पर डाप ए सफारतकारी की फतह है। मुआहदे से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा सामनाई समेत सभी के मुबारक दिया तो जैस तई मुआहदे जा समर आवाम तई न पहुंचंदा सुख से न वेहंदुस। वजीर आजम शहबाज शरीफ के ऐलान बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान से मुआहदो थे तस्दीक कर छी। डोनाल्ड ट्रंप चवाए तो मुआहदे से सयन बाद जुम्मेवार ढी आबना हरमुद भी खुली वेंदो। ईरानी बंदरगाह की नाकाबंदी भी खत्म करन शुरू कर छी है। जहाजन की अचवन जुमे का शुरू थी वेंदी। आबनाए हरमुद मां गुजरंदड़ जहाजन का टोल टैक्स न वरतो वेंदो। दुनिया जा जहाज पैंजी सरगर्मी शुरू कन। नायब सदर जेडी वेंस चवाए तो सदर ट्रंप ईरान के खतरे के खत्म करण में कामयाब रो है। वायदो 50 साल तई विच ओभर के तब्दील कर छी। मुआहदे से विच ओभर में खुशहाली की शुरूआत थन्दी। ईरान अमेरिका के अमन मुआहदो कबूल करण से मजबूर कर। मुफाहमत की यादाश्त जो मतलब दुश्मन से भरोसा करण ना है। आखिरी मुआहदे के लिए गालू 60 दिन अंदर थन्दी। मुआहदे का एतराम न कर तो ईरान जवाब दी। ईरान के नायब परदेही वजीर काजिम गरीब आबादी चवाए तो अमेरिका की सामूरी नाकाबंदी अज का खत्म थी वेंदी। मुआहदे जो मतन सयन बाद जारी कर वो। ईरान के खात्म लंबिया चवाए तो शिकस्त बाद अमेरिका इसराइल वट हथियार फिटा करण का सिवाय बो को ऑप्शन न हो। ईरान एटमी हथियार नठा ही नई मिसाइल प्रोग्राम में मजामती ग्रुप की मदद कंदो। ईरान जा 24 अरब डॉलर जा मुंजमित असासा बहाल कया वेंदा। ईरान अमेरिका विच में तय थियल 14 नुक्तन जा तफसील सामू अची व्या। अमेरिकी मीडिया मुजिब वायदे से सहन बाद आबना हरमुज की नाकाबंदी खत्म कई वेंदी। ईरान के तेल ए पेट्रोकेमिकल बरामदात ता पाबंदी हटाई वेंदियूं। लबनान समेत सभी महाजन से फौरी ए मुस्तकिल जंगबंदी जो मुतालबो भी शामिल। अमेरिका ए संदस इतिहादन के ईरान की नए से तामीर के लिए घटे में घट 300 अरब डॉलर फराहम करना पवंदा। अमन वायदे की तौसीक सलामती काउंसिल के छहरा वसीले भी कई वेंदी। सदर आसिफ अली ज़रदारी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ए पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी पारा ईरान अमेरिका मुआहदे की आजियां। सदर आसिफ अली ज़रदारी चवाए तो वफ़ाहमत हतमी मुआहदे जो बुनियाद बणबी ए खिते में जटादार अमन कायम थी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार चवाए तो अमेरिका ईरान मुआहदे के मुस्तहकम करण वाली कोशिशों की हिमायत कंदी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो तो अमन मुआहदो तकरार घटाने गाल जरिए अमन के अगते बधाने तरफ पेरों कदम है। अमन अमल के अगते बधाने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत के विजन के खिराज तहसीन पेश कया तो। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इलाका इस्तेकाम के लिए हिमायत तारीफ लायक है।
2: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: मोहम्मद उमर बुजी डिपॉजिट कोर्सेज लाइ दाखिलाऊं जारी आहिनि। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, मेडिकल इमेजिंग टेक्नीशियन, क्रिटिकल केयर, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर। दाखिला फीस 5,000, महवार फीस 4,000। रिकॉग्नाइज्ड बाय अलाइड इन हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल एफिलिएटेड विद सिंध टेक्निकल बोर्ड। एड्रेस मोहम्मद उमर बुगियो, इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज, मीरवा रोड, नियर डिस्ट्रिक्ट जेल, डिफेंस सिटी, मीरपुर खास। वधीक मालूमात लाइ 0300-2823-667, 0333-7214436।
1: अखियुनि जे सभ खां वॾे इदारे जा मशहूर या लेज़र फेको, कारे पाणीअ जो इलाज ऐं आपरेशन, पर्दनि जी बीमारियुनि जो इलाज ऐं अखियुनि जी ॿियुनि बीमारियुनि जो इलाज कंदा आहिनि। टाइम रोज़ाना सुबुह 10 वॻे खां 1 वॻे ताईं, शाम 6 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं। आचर मोकल आहे जुमे जे ॾींहुं आपरेशन कया वेंदा। एड्रेस सर्जन डॉक्टर असलम मोहम्मद हयात खान, लेज़र अखियुनि जी अस्पताल, सर सैयद रोड, गरीबाबाद, मीरपुर खास। मोबाइल नंबर 0303-2617-077।
2: कारोबारी हजरात के लिए खुशखबरी, आपके कारोबार की मशहूरी का सबसे बड़ा जरिया जे मीरपुर खास FM 88 की आवाज़। अखबार, मिलाद, जलसा, स्कूल, कॉलेजेस, ब्यूटी पार्लर्स, कॉस्मेटिक्स शॉप्स, जनरल और मेडिकल स्टोर्स, बुटीक, गारमेंट शॉप्स, मोबाइल शॉप्स, ज्वेलर शॉप्स, अस्पताल, फ्री मेडिकल कैंप्स, NGO, फूड पॉइंट्स, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स, शोरूम, ऑटो शॉप्स, हाउसिंग स्कीम्स, क्रिकेट टूर्नामेंट्स, सकाफती मेला, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन, शादी हॉल, मुख्तलिफ इकसाम की प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड शॉप्स, सीड कारपोरेशन, सरकारी और गैर सरकारी ऐलानात के इश्तहारात के साथ साथ लाइव ब्रांडेड प्रोग्राम से लगाएं अपने कारोबार को 4 चांद, वो भी आपकी तवक्कोआत से कम रेट्स में। तो अभी राब्ता करें मार्केटिंग मैनेजर, मोबाइल नंबर 0333-2272-4301 और 0333-3722-071।
3: मलकू स्टूडियो सीजन 1।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: Bankal Habib.

बेंजोल पेरोक्साइड और सिल्केलिक एसिड मौजूद हो जो जिल की गहराई तक सफाई करके आपके जो स्किन के ओपन पोर्स होते हैं उन्हें क्लोज कर दें यानी बंद कर दें। रोजाना हमारी स्किन कई किस्म की आलूदगियों और मुजर सेहत कीमियाई मादों के असरात झेलती है, इसलिए क्लिंजिंग मिल्क या सादा पेट्रोलियम जेली से चेहरे, गर्दन, बाजू और पैरों की और हाथों की सफाई करना जरूरी है। इसके बाद पील ऑफ मास्क या मुल्तानी मिट्टी का मास्क घर पे बासानी बनाया लगाया जा सकता है। चेहरे की जिल को नम करने के लिए अच्छी साख रखने वाली कंपनी का तैयार करदा मॉइस्चराइजर

रिवर्स गियर सेगमेंट में मैं आपको मैडम मलका तरन्नुम नूरजहां की आवाज में बहुत ही प्यारा बहुत ही सुरीला सदाबहार सा गीत सुना रही हूँ। आपने एंजॉय करना है, स्ट्राइक को स्ट्राइक के बाद होगा ब्रेक, ब्रेक के बाद अगेन आपको ज्वाइन करते हैं।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क
1: जदीद गमी सबब शहरन के गुजारिश कई वने थी तो सुबह 11 वगे का शाम 4 वगे ताई खास एहतियाती तदबीरू अख्तियार कन गैर जरूरी तौर ते बाहर न वनो हल्का कपड़ा पायो मथो ढके रखो उन दौरान शदीद जिस्मानी कम का पासो करियो बारन बुजुर्गन बीमार मानन जो खास ख्याल रखो वधिक पानी पियो महफूज रहो ही अवामी आगाही पैगाम हुकूमत सिंध PDMA कमिश्नर कराची के इलेक्ट्रिक सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तावन से पेश कयो वयो
2: अजरा बहन बात तो सुनो हादसे अचानक ही हुआ करते हैं घबराए नहीं समझदारी से काम लें सबसे पहले कुत्ते के काटे जख्म को 20 मिनट तक साफ पानी और आम साबुन से धोएं इसके बाद करीबी अस्पताल जाकर डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं करीबी एंटी रेबीज सेंटर की मालूमात के लिए

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: वो क्या है जिसका कोई वजन नहीं है मगर 20 लोग मिलकर भी उसे नहीं उठा सकते। क्या जवाब है इस सवाल का, ये बताने के लिए आपने डायल करना है 03136615688। नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: वेलकम कहते हैं अदा, कौन बात कर रहा है? अदा वलीकार जो था तव के आंसर बुदायो सवाल जो
1: अभी साया।
0: चले ठीक है अदा, बहुत शुक्रिया। साया तो है लेकिन ये इस सवाल का जवाब नहीं है। ठीक है, इस सवाल का जवाब कुछ और है। वो क्या है जिसका कोई वजन नहीं है मगर भी उसे नहीं उठा सकते। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। जी यास्मीन, क्या आंसर है इस सवाल का?
2: पानी का बुलबुला।
0: राइट आंसर है यास्मीन, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, अल्लाह हाफिज। वो क्या है जिसका कोई वजन नहीं मगर 20 लोग भी मिलकर उसे नहीं उठा सकते? जनाब पानी का बुलबुला। आप बताएं उठा सकते हैं 20 लोग मिलकर?
3: दिल में तुझको आना था, सर पे चढ़ रही है तू।
0: अच्छा जी, एक और सवाल पूछ लेते हैं। तो दो जो आंसर हमें मिल चुके हैं, जिसने लगता है पांच भी पास से तेज हो चुके हैं।
3: कैसी जिंदगी है तू।
0: अच्छा वो मुझे, अच्छा अब आपने मुझे सवाल का जवाब बताना है कि वो कौन सी चीज है जो हमेशा आपके पास रहती है मगर आप फिर भी उसे कहीं ना कहीं छोड़ आते हैं। वो कौन सी चीज है जो हमेशा आपके पास रहती है मगर आप फिर भी उसे कहीं ना कहीं छोड़ आते हैं? नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या आंसर है सवाल का? चले लेकिन आपका जवाब गलत है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अब दूसरा सवाल है, उस पर गौर करें। वो कौन सी चीज है जो हमेशा आपके पास रहती है मगर आप फिर भी उससे कहीं ना कहीं छोड़ आते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी अदा, क्या आंसर है इस सवाल का? क्या कहा? चलें ठीक है, लेकिन ये भी आंसर राइट नहीं है, रॉन्ग आंसर है, गलत जवाब है आपका। अल्लाह माफ करे, जनाजा जीता जागता इंसान है, चीज नहीं है। ठीक है, वो कौन सी चीज है जो हमेशा आपके पास रहती है मगर आप फिर

जरूरत पड़ती है ना लाइफ में, यहाँ वहाँ इधर उधर नादरा जाते हैं, वहाँ पर भी शायद लगाते होंगे है ना, और कहीं भी वेरिफिकेशन का कोई भी काम हो रहा था, बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वहाँ भी शायद यही सीन होता है। तो जना फिंगरप्रिंट आपके सवाल का दुरुस्त जवाब है, और अब हम जाएंगे ब्रेक पे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करती हूँ आपको।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: चलिए जनाब आपकी कुछ कॉल शामिल प्रोग्राम कर लें। और आज मैंने आपसे पूछा था जब आपके घर में खुदा ना खास्ता ऐसा हो कि आग लग जाए तो आप सबसे पहले क्या लेकर भागेंगे, इस हवाले से आपकी इच्छा ने कॉल जो है मैंने सोचा कुछ और भी हम शामिल प्रोग्राम कर लें। और मैं अपने लिसनर से हमेशा यही कहती हूँ, आपसे हमेशा ये रिक्वेस्ट होती है कि जब भी आप कॉल किया करें तो कोशिश किया करें टॉपिक को फॉलो किया करें। आरजे जो है इतनी मेहनत से सोच के रोज एक नया मौजू गुफ्तगु आपके लिए लेकर आते हैं, और हम मशरिक की कह रहे होते हैं, आप लोग मगरिब की कह रहे होते हैं, तो फिर वो जो हमारी मेहनत होती है ना, वो जो है फिर हमें ऐसा फील होता है कि नहीं, हम जो है इतना सोच के इनके लिए टॉपिक लेके आते हैं और इनको जो है टॉपिक पे ही बात नहीं करनी, तो फिर बेहतर है बंदा जो है ना इनसे टॉपिक के बारे में कुछ पूछे ही नहीं, ऐसा ही हो बगैर टॉपिक के भी प्रोग्राम में जो है ना मजा नहीं आता। चलें जी नेक्स्ट कॉलर की जानिब जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहा
1: है?
0: तुक्के लगा नहीं सकती, वक्त बहुत कम है, प्लीज आप बता दो।
1: आप बता दो ना, मैसेज करती हूं आपको।
0: अस्मा बात कर रही है
1: जी हाँ, कैसी आप?
0: मैं गुड, मैं अच्छी, आप बताओ आप ठीक हो?
1: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
0: अच्छा टॉपिक के हवाले से तो आपने बताया था आप अपने घर वालों को लेके वहाँ से 9-2-11 हो जाएंगी।
1: जी जी
0: चलें,
1: ये तो 11 वाले ही सबसे ज्यादा है मैंने।
0: ठीक है, और जी टॉपिक के हवाले से तो आपने बात कर ली, कुछ और कहना चाहेंगी सब सुनने वालों को, कोई पैगाम देना चाहेंगी? बेशक इसमें कोई शक नहीं है, हमारी फैमिली जो होती है वो ही हमारी हर हाल में कदम ब कदम हमारे साथ होती है, तो उनका साथ बहुत अहम होता है।
1: अगर इंसान तो वापस नहीं आएगा।
0: बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया अस्मा, आप शामली प्रोग्राम हुई, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह इजाजत ले ली जाए आज के इस प्रोग्राम में, हमारा और आपका साथ यहीं तक का।

0: ही आहे सिंध जी दिल ये मटियारे एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डूंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू शुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो
2: नहीं। ये है DH FM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी करो
2: लई। तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: ढोला बिछड़ गया

एक नव गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट एंड ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो डी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियण वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: किया है संत जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू सुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो लई।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

अल्हम्दुलिल्लाह ईरान अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम मुहादों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेजबानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के दो ममालिक के दरमियान

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाता मियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो लई।

डूंगर डुखो यन के दिलासा देजन घणो कुछ जे तिन के जिना ता हो तवन तो की संदा तिन पहन पेर डुखो यन के।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम
1: 91.6 सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जी मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुजा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नई का चीज में आहे लकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: अल्हम्दुलिल्लाह ईरान अमेरिका ने लुबनान से समेत तमाम वादों पर फौजी कार्रवाई के फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया है। तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब इंशाअल्लाह जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेजबानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की दो ममालिक के दरमियान मुआहदा नहीं जनाब स्पीकर बल्कि अमन और मुकालमे की फतह है।
1: पाकिस्तान की टैकड़ी कामयाब अमरीका ईरान सबुरन माजन ते जंग खत्म कर छी बिन्हीं मुल्क विच में जंग के खात्मे वारो शुरुआती मुआहदो पाकिस्तान की मेजबानी हेठ स्विट्जरलैंड के शहर जेनीवा में 9 जून से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बया शरीक थन्दा कौमी असेंबली में खिताब कन्दे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो जंग की डिघी रात बाद अमन जो सिज निकरी चुको है। ईरान अमरीका लबनान समेत समूरन माजन से जंग रोकने ऐलान किया है। तारीखी मुआहदे की तकरीब 19 जून जुमे वारे डी जनीवा में थी जैसी मेजबानी पाकिस्तान कंदो ही बिन मुल्कन में अमन मुआहदो नपर डहप ए सिफारतकारी की फतह है। मुआहदे से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ए ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई समेत सभी के मुबारक दिया तो जेस तई मुआहदे जहा समर अवाम तई न पहुंचा सुख सा न वेहंदुसि।

0: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम पखनि जे मुक़ाबले में ॾे ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: हम कहां के सच्चे थे, दर्द पी के मरते थे, जहर पी के जीते थे, जिंदगी के धोखे में हर किसी से लड़ते थे। हम कहां के सच्चे थे।

0: कैसा महसूस हो रहा?
1: उसे खो के जिससे तुम बहुत प्यार करती हो।
2: माजी था ये मेरा।
1: माजी था लेकिन खूबसूरत था ना।
2: मुझसे बात कर।

0: या है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खां भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुगर खा भी दाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी करो
2: नहीं। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो,
1: मेरी जिंदगी
2: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: काश हमारे पास जैसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
4: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध जी नए माली साल जी बजट 17 पेश की वी थी। सरकारी मुलाज़िमनि जी पघारनि में 10%, रिटायर्ड मुलाज़िमनि जी पेंशन में 8%, ए पोरतन जी माहवार अजूरे में 20% वाध जो इम्कान। सिंध के गवर्नर निहाल हाशमी सिंध असेंबली जो बजट इजलास 4 PM तलब करे वरतो। सिंध असेंबली जी बजट इजलास का अग बजट जी मंजूरी लाए सिंध काबिना जो इजलास भी थन्द। नए माली साल में सूबाई तरक्याती बजट 800 रुपये का घट रहने जो इम्कान। मौसमियाती तब्दीली सेहत ए तालीम वाल मनसूबन के अहमियत दिनी वेंदी। वडो वजीर मुराद अली शाह नानेवर वजीर की हैसियत में 10 सिंध की बजट पेश कंदो। आबनाए हुरमज मुकम्मल तौर खुली वयो आहे। सामुंडी जहाजन की अच वञ भी शुरू थी वई आहे। अमरीकी सदर के नई दावा सामूं अची वई। सोशल मीडिया से जारी कल बयान में डोनाल्ड ट्रंप जो चवण हो आबनाए हुरमज मां वड़ी तादाद में तेल से भरल जहाज गुजरी वया। सामुंडी जहाजन की अच वञ लाए बया भी सामुंडी लंघ मौजूद आहिन। मुआदे जो मकसद डोहन के माफ करण या विसारण ना है। ईरानी कौम पंजी क्यादत का महरूम थी। अमरीका ए इसराइल के जुल्मन के कदें भी न विसारींदी। आबनाए हुरमज का समूरा मामला ईरानी दिसंदो। लबनान समेत समूरन महाजन ते जंग खत्म थियण घुर्जे। अमरीका सा मुआदे बाद ईरान जो बाजाबता मौके सामू अची वो। तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कन्दे ईरानी परदेही तर्जमान इस्माइल बकाई जो चवण हो असा वड़ी कुर्बानियों डेई पंजे वतन जो दिफा कयो। ईरानी अवाम पंजी फौज जो भरपूर साथ दिनो। आलमी बिरादरी इसराइल ए अमरीका के जुल्मन की मजम्मत करण में मुकम्मल तौर से नाकाम रही। अमरीका से मुआदे से जुमे से जिनीवा में सयू कयू वेंद।
2: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
3: नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बनाए बाल मजबूत और वो भी बेहतर कीमत में, पूरे 50 रुपए की बचत के साथ। लाइफ बॉय शैम्पू कुदरती मजबूती का न्यू लुक।
2: पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।

0: पीछे पीछे पीछे।
1: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
2: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
1: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
1: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: काश हमारे पास वैसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
4: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे सकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: कहती अम्मी, मैं मनोज उनकी जिंदगी में अगर मैं नहीं होती तो सब कुछ सही होता।
1: मोहलत कोई मुझको थोड़ी सी दे दे, या मेरे दिल का धड़कना भी दे दे।
2: देखिए मोहलत रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे की करो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

देखिए कलंदर 14 अक्टूबर से जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कहीं मारू डुगर खां भी दाधा नियर नहीं का चीज में आहे सकी कड़ो
2: लई। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल कही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हाँ अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाने पंहिंजी स्किन खे दियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो डी अवां खे रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सां हर किस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाने थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताजगी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: या ही सिंध जी दिल टेर एफ एम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: ही आहे सिंधजी दिल ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज
1: ओ मुझे मस्त मल गई मारू डुंगर खां भी डाढा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है GFM 88 नेटवर्क GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे FM 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मल गही मारू डुंगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज न आहे लकी कड़ो नहीं।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध।
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
4: पामत हतमी मुआदे जो बुनियाद पड़वी खत्े में जटादार अमन कायम थो। नायब सियासत सलाहकार अमरीका ईरान मुआदे के मुस्तहकम करण वारियन कोशिशन की हिमायत कन्दी। फिलहाल भुट्टो जरदारी अमन मुआदो तकरार घटाण और गाल जरिए अमन के अगत तरफ पे कदम है। अमन अमल के अगत में वजी अजम शहबाज शरीफ की क्यादत विजन के खिराज तहसीन पेश कया तो। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर के इलाकई इस्तेकाम लाए हिमायत तारीफ लायक है।
5: कौमी असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक पारा ईरान अमरीका मुआदे से कौम के वाधायूं। सरदार अयाज सादिक पाकिस्तानी क्यादत अमुन एवार्ड के मुस्तहक है। अमुन मुआदे में पाकिस्तान के किरदार से कौम के मुबारकबाद दियां तो। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर की मेहनत के भी सलाम पेश कया तो। दिफा वाले वजीर ख्वाजा आसिफ चयो तो ईरान अमरीका मुआदे से जुमे वाले ढी सयू थी वेंदू। वजीर आजम ए फील्ड मार्शल अमुन के कामयाब करने लाए ढी रात मेहनत कई।
4: गडियल कौमन समेत आलमी बिरादरी पारा अमरीका ईरान विच में तय थियल मुआदे जी आजियां। चीन तुर्किया सऊदी अरब बरतानिया जर्मनी फ्रांस इटली कैनेडा ए बेन मुल्क पारा आजियां। अखबार जंग के खात्मे से दुनिया में अमन जो नओ दौर शुरू थी अवामी मसला हल थींदा।
5: इसराइल जो ईरान अमरीका विच में तय थियल मुआदे के तस्लीम करण का इनकार। लबनान ए शाम के कब्जो कयल इलाका न छडण जो ऐलान। इसराइली दिफा वाले वजीर चयो है इसराइल लबनान ए शाम जा कब्जो कयल इलाका न छडींदो। इसराइली फौज अणजातल मुद्दे ताई लबनान शाम ए गजा में मौजूद रहंदी। इसराइल के तहफुज के हर हाल में यकीनी बनाया वेंदो। इसराइली वजीर चयो है अमरीकी मुआदे जा पाबंद ना आहियूं।

0: टेंथ जी नई माली साल जी बजट 17 जून 2018 डी पेश कई वे सरकारी मुलाज़िमन जी पगार में 10% रिटायर्ड मुलाज़िमन जी पेंशन में 8% पोरियतन जी माहवार उजूरे में 20% वाध जो इम्कान सिंध के गवर्नर निहाल हाशमी सिंध असेंबली जो बजट इजलास 2 वगे तलब करे वरतो सिंध असेंबली जी बजट इजलास का अग बजट की मंजूरी लाए सिंध काबीना जो इजलास भी थी नए माली साल में सूबाई तरक्याती बजट 800 अरब रूपये का घट रहने जो इम्कान मौसमियाती तब्दीली सेहत ए तालीम वारन मनसूबन के अहमियत दिनी वेंदी वडो वजीर माद अली शाह नाणे वारे वजीर की हैसियत में नवो भेरो सिंध जी बजट पेश कंदो
1: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की बरतानवी हाई कमीशन इस्लामाबाद आमंद बरतानिया के विच ओभर वे मामलन बाबत वजीर से मुलाकात बिलावल भुट्टो जरदारी बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट ए पॉलिटिकल काउंसलर नकोल रॉबर्ट्स ए बेन से मुलाकात कई बेतरफी सहकार के हथी वठण से गालू

0: गीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज, सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: yeah!

0: उनके कैमरे का तो रिजल्ट कितना अच्छा है, ये तो देखो।
1: एक और नया सूट, ये किस सहेली ने दिए आप?
2: एक्सक्यूज मी, मेरी तरफ से गिफ्ट।

0: जमाना नहीं बदला, बेटियों के बारे में लोग अब भी वही रवायती जहन रखते हैं।
1: हम बेटी हैं, कोई गले का फंदा थोड़ी है।
2: तुम एक खोखली औरत हो, मर्दों से दिल लगी करने वाली।
0: अगर मेरे बेटे को ये ना मिले ना तो मैं पागल हो जाएगा।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: yeah!

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा हो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: Yeah!

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: हम कहां के सच्चे थे, दर्द पी के मरते थे, जहर पी के जीते थे, जिंदगी के धोखे में हर किसी से लड़ते थे। हम कहां के सच्चे थे,

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अंग अखरन में फेरफार बाबत वजाहत वठण जो फैसलो ज़रीन मूजिब MNA नवीद कमर पार्टी सरबराह बिलावल भुट्टो के ब्रीफिंग दीदे बुधायो तो पीपुल्स पार्टी असां शेयर कयल बजट ऐवान में पेश कयल बजट के अंग अखरन में वो फर्क है। ऐवान में यह बजट पेश ना थी जी पीपुल्स पार्टी के ॾेखारी वई हुई।
2: सिंध जी नए माली साल जी बजट 17 जून अरबा डी पेश कई वेंदी। सरकारी मुलाज़मन जी पगार में 10%, रिटायर्ड मुलाज़मन जी पेंशन में 8%, पोरियतन जी माहवार उजूरे में 20% वाजिब कान। सिंध गवर्नर नियाल अशफी सिंध असेंबली जो बजट इजलास अरबा डी 2 बजे तलब करे वरतो। सिंध असेंबली जी बजट इजलास का अग बजट की मंजूरी लाए सिंध काबिना जो इजलास भी थन्द। नए माली साल में सूबाई तरक्याती बजट 800 अरब रूपये का घट रहने जो इम्कान।

0: जबकि जिम्मे फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद नासिम अब्दुल्ला ए बहरिया जो लेफ्टिनेंट तहा अब्बासी शहीद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हथियारबंद फौजन के सरबाहन पारा हादसे के दुख जो इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी वजीर अजम शहबाज शरीफ घरू वजीर मोहसिन नकवी वडे वजीर मुराद अली शाह बेन पारा हादसे में बिन जानियों के नुकसान से अफसोस जो इजहार।
1: स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी जो

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।